थो रेडियो नेपाल ख नेपाल पासे समाचार जिउ पेस पाखेन यना दिशा थौ नेपाल सम चिन्स स पिकु द तसलागा अमाइ आइतबार निसे मदिक वोगु वा या हुनी देनिङ क लिचो लाकुगु दु चितवने आतक दक्ले अप वा वगु दु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग कथ सुदूरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी व मधेस प्रदेशे मो वा वगुदु गण्डकी बागमती व कोशी प्रदेशे आप्ला वा वगुली बामलाक लिचो लाकुगुदु सुनिगलेन मदिक वा वगु ख कास्की खुसी सडक चुकुगु व छे थुनाबिगुदु चितवन या नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डे सडक पङ्ग जुगुदु मकवानपुर यी वैगु सडके पङ्ग जुग्ली थोले मछेले त इनाप यागुदु चितवने नि पेगौ दुनी निस खुइ गुगु मिलिमिटर वा वगु दु पूर्वी पहाड व तराई या तिथि जिल्ला वगु वा या हुने सतकोशी खुसी बा वगुदु कोशी ब्यारेजे ल या बा छगु लाख ने निदो पेस व सुनिगु क्युसेक प्रति सेकेन्ड जुगु सुनसरिया प्रहरी नायब उपरिचेक चन्द्रबहादुर खड्का दाइदिगु ख खुसी खुसी ने खुगु खापा मध्ये निगु खापा च्याका बिगुदु कालीकोटे चलखलाना निम मुनु त सिगुदु जिल्ला या सानी त्रिवेणी गाउँपालिका छ काप्रे खोला चलखलाना निम सिगु ख पी खुद दुमा मन्दिर साउद व ने खुद दुमा लालबहादुर साउथ सिगु जिल्ला प्रहरी ज्याकु धागुदु देय नेगुली प्रदेशे सुविधा सम्पन्न वर्ण अर्थात् जलन उपचार केन्द्र पलिस्ता या योजना तत्काल न्ह्याने यङ्केत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उज ब्यादिगुदु प्रधानमन्त्री व मन्त्र प्रसाद ज्यागुति मिग स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपति पि लिसे जुगु सलस वेकल सरकारी अस्पतालले बर्न वार्ड सुदृढकरण नीति तक मागु योजना झ्याने यङ्गेत उज व्याधिको ख गम्भीर प्रकृति या जलिन या लोगी पिन स इलेहे गुणस्तरी वास या दैको अव्यवस्था सुनिश्चित या त सङ्घ प्रदेश व स्वापदुको स्वास्थ्य संस्था तुथि प्रभावकारी समन्वय जुई मागुली वेक्ल ब व्याधिको दु गुणस्तरीय प्रभावकारी व नागरिक मैत्री स्वास्थ्य सेवा सरकारी उच्च प्राथमिकता दुगु नेतना दिशे वेक्ल अस्पतालले सुचुपिचु सेवा प्रास सुधार डिजिटल प्रविधि या छेलेबेला सुशासन प्रभावकारी कानुन या त ध्यान आकर्षण या कादिगुदु वेक्ल विपन्न असहाय व आर्थिक रूप कमजोर नागरिक या स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार या त निजी अस्पताल त्यसमा बहिरङ सेवा या मोतिन छिगु प्रतिशत हिस्सा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध या के मागु कानुनी व्यवस्था या त प्रभावकारी रूपमा कारण या के त क निर्देशन ब्यादिगुदु सुनसरिया इटहरी उपमहानगरपालिका बिस लिक विद्युत ज्याकु धरान्या भ्यान छाका निम सिगु दुदासा छम खापा जुगुदु बा एक सोह्र एक नम्बर भ्यान भिग बहनी अनित्र जुवा छाका जुबले चालक छाका धरान उपमहानगरपालिका तेह्र या श्री निदया बिर्खबहादुर राई व धरान उपमहानगरपालिका सोह्र चुनीमा पी गुदया सुमन आचार्य सिगुख बिपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वास यागु झोले वेकपिनिम अन्हे मधुगु ख कापा जुम धरान उपमहानगरपालिका बिस चुनीमा श्री निदया पवन राई या त अस्पताले वास यनाचोङ्गुदु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नायब पदे अर्जुन घिमिरे व प्रेस काउन्सिल नेपाल या नायब पदे उमेश श्रेष्ठ सालिक नियुक्त ज्यादिगुदु असार चौबिस गते या मन्त्र परिषद या कोचिना कथा वेकपिन्त नियुक्त यागुख नियुक्ति पौलना दिशे सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा निगुली संस्था या नवनियुक्त नायपिन्त लसना ब्यादिसे लिचो लाकेगु ज्या या त उज ब्यादिल सञ्चार मन्त्री तिमिल सिन्हा आ या इले हुइना बिना जुइगु व मकुगु वा मुडुगु सुच या हुने हात बोलुङ्गुली थुकिया त दिके त उज नाप ब्यादिल ऊर्जा जलस्रोत तथा शिक्षा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ या कुतल कर्णाली मतया पङ्ग जेङ्केत यान्त्रिक क्रेन छुगु कु छिगु धैदिगुदु मन्त्री श्रेष्ठ निवान हने सुङ्गु प्रदेश या न्यागु जिल्ला उनिगु झोले
सुर्खेत नापोक कर्णाली प्रदेश लाइन त्रिपिङ या हुने तारन्ता मत सिगुली थुकिया त जेङ्केत कुत यानादिगो ख सार सेवा बिहारी कुपङ्ग जेङ्केत मदिक कुत यागु वेक्ल कनादिल लजगाए नीति दुलन्द ल्यामत विदेशे वनाचुङ इले पिद दुम देवेन्द्र पराजुली गामे कृषि व पशुपालन याना दाकमे नाचुङ दु स्थानीय जाते निम सोम मे लहिना वेकल न्याम मुर्रा जात्या मे नाप आ छिम मे लहिना चुनादिगु दु निथ चे गुनिसे सच्ची लिटर तक दुरो न्याना फुक खर्च कटेना लच्छी छगु लाख दा कमे नाचुङ्गु थागुदु राजधानी विभाग या मिग निसे नुगु राजधानी उत्पादन व व्यवस्थापन प्रणाली पाखे सेवा न्याकुगुदु डाटा माइग्रेसन या झोले छगु करोड नेपाली नारिक या राजधानी या धल सुरक्षित रूपमा नुगु प्रणाली यङ्कुगु धागुदु नेपाल मजदुर किसान पार्टी या केन्द्रीय छ्यान्जे प्रेम सुवाला खोप नगरपालिका या नुगु पिथना सञ्चार माध्यमे खोप नगरपालिका दुई या पित बोझ्या एनादि गुदु उगे खोप नगरपालिका गोसाले जुगु ज्याजोले वेक्ल 2082 साले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई उत्कृष्ट लिचो हेत तालापी बोमी बनिकुतिया त नहनिजा यनादिको ख ज्याजोले नौना दिसे छ्यान्जे सुवाला छुन सस्ता यागु महत्त्वपूर्ण ज्या लिखित दस्तावेजीकरण वा अभिलेखन याना तेगु ज्या उकिया ऐतिहासिक महत्त्व अफै थैदिल खोपया ऐतिहासिक सांस्कृतिक व पुरातात्विक महत्व सम्पदा संरक्षण व व्यवस्थापन विशेष ध्यान बिमागु खे ब व्याधि से भेटिकन सिटी थे योजनाबद्ध ढङ्ग खोप दे या न संरक्षण विकास या त वेक्ल सुझाव व्याधि ल समानान्तर बौद्ध आध्यात्मिक पत्रिका समेक सन्देश्य गोसले नु बानेश्वरी चुङ्गु विश्व शान्ति बिहारी जुगु छगु ज्याजो यदि बुद्ध वाणी नाया सपु पित पूजा जुगुदु उगुहे ज्याजुले बौद्ध धर्म खेले ता यी झनिस योगदान व्याधिपी ओथिति कथा भूमिका मितादि पिन्त हनिज्या व बौद्ध प्रतिभा शिर पार्न ल लागु ख विश्व शान्ति बिहारी प्रमुख भिच्चु बोधि ज्ञान महाशिविर र प्रमुख आतिथ्य जुगु ज्याजुले ओसपल डाक्टर गोरखमान श्रेष्ठ अनुवाद यनादिको सफु यातकया बौद्ध विद्वान सह प्राध्यापक मदन रत्न मानन्द र समीक्षात्मक टिप्पणी यानादिको ख ज्याजुले थेरवाद बुद्ध धर्म परियति शिक्षा विपसिना ध्यान लिसे सामाजिक खेले ब्यादिको विशिष्ट ओ जो मधुको योगदान या त कया बौद्ध विदुषी नानीमाया मानन्द ओ बौद्ध क्षय विशिष्ट व्यक्ति पिनीको मधिक जीवन चुएको ज्या क्रियाशील व्यक्तित्व रत्न सुन्दर साक्ये या त पिच्छु अचुक कोष बौद्ध सेवा शिर्पा 2083 ल लागु ख अथे बौद्ध धर्म सम्बन्धी अध्ययन अध्यापन अनुसन्धान व लेखने योगदान बियाचुना विजयादिमा अनागरिका सदाचारी गुरुमा व बौद्ध साहित्य व संस्कृतिबारे उगु छगु दर्जन मल्याको सपु चुया पिथनादिमा सुगत बौद्ध विद्यालय पुलाम प्राचार्य तीर्थरत्न साक्य या त केदारनाथ देवी शिर्पा 2083 ल लागु ख लिसे परियति शिक्षा बोर्ड अया विद्या पि निम श्री मानेर पिन्तन शिर्पा ल लागु ख वरिष्ठ साहित्यकार अर्पणा प्रधान पेङ्गु सफु झिगु नख चख व जात्रा पर्व निबन्ध सङ्ग्रह जी मनाचुना चिबाख मुना म बाँची रहेछु नेपाली अनुवाद व पराग समालोचना पितपुज्या जुगुदु साहित्यकार प्रधान छेलुबी जुगु उगु ज्याजले नेपाल भाषा एकाडेमिया भाइस चान्सलर वरिष्ठ साहित्य समालोचक डाक्टर पुष्परत्न राज कर्णिकार मु पा कथ चाइदिगु ख समालोचक पूर्ण ताम्रकार सभानया सुई जुगु उगु ज्याजले साहित्यकार ईश्वरीमया श्रेष्ठ समालोचक भीमलाल श्रेष्ठ मिसा साहित्य मुनाय नायो विमल प्रभा प्रजाचार्य विशेष पाकथ छायादिगु ख कुवेत व इराके चोपी नेपामी पिन्त स्थानीय सुरक्षा अवस्था ध्याने तसे उच्च सतर्कता छेले त कुवेते चुङ्गु नेपाली दूतावास इनाब यागुदु दूतावास जारी यागु सूचना पाखे कुवेत व इराक आधिकारिक निकाय पाखे जारी जुइगु निर्देशन व सूचना पूर्ण रूपमा पालन या त नेपामी समुदाय त इनाब यागु ख लिसे सामाजिक सञ्जालले अपुष्ट भ्रामक सूचना सेयर मया त व सरकारी निकाय प्रतिबन्ध तहको गतिविधि संलग्न मौजुद न इनाब यागुदु दूतावास स्वर्गदेय खने
दैगु छुन हवाई आक्रमण प्रतिरक्षा गतिविधि व उजोगु कर्णालिसे स्वापु दुगु किपा व भिडियो कया सामाजिक सञ्जाल सार्वजिक मयात विशेष इनाप यागुदु उजोगु विशेष कुवेत सरकार जारी यागु नियम व निर्देशन पालन या मागु सूचनाले नेतना तगुदु अथेहे छुन शङ्कास्पद व अपरिचित वस्तु या लिक्क मौनेत व साइनेन न्यासा पिने दुपी मनु तेस लिक्क चङ्गु भवन दुनी आश्रय कायत व भवन दुनी दुपी व्यक्ति पि सुरक्षित हासे हे चोने त दूतावास इनाप यागुदु थ विरुद्ध जुइगु सैन्य कारवाहीसँग अमेरिका त ग्वाली याइगु खाडी मुलुके आक्रमण यागु ख्याचो इरान बिगुदु इरान अमेरिका त भूमि व सैन्य अड्डा छेलबुल या त बिगु खाडी मुलुक या त प्रत्यक्ष निशाना देखेको ख्याचो बिगु ख अमेरिका आक्रमण लिप्पा इरानी विदेश मन्त्रालय उगु ख्याचो जारी यागु बिबिसी जानकारी बिगु ख बङ्गलादेश आफ्नो वा वया मोटिन निए छम मुनु त सिगुदु खुसी बा व चलख मुनु सिगु ख राजधानी ढाका नाप तिथि लागे आफ्नो मुनु त पङ्गले लागुदु थौ देन्यङ्क सामान्य लिसे मदिक वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग थाहागुदु हिमाली लागे चुवा पुक्वा वैगु थाहागुदु सोनिगले निपेगो दुनी नि कुगु फुटी न्यागु डिग्री सेल्सियस याक्वाजो लुगु ख सोनिगले सुते न्याता इजुया छिगु मिनेटे लुगु सूर्य शनिले नेता जुया नेगु मिनेटे बी नेपाल भाषा समाचार कोचाल शुभ

लसो फ्याफुल्ला तिमी मजुसेसम्म त 2862 तालो बेलबोलाला छेपा निचुई सेकु विक्रमसम्म 2083 साल असार लाला सुमचुई मिरे मङ्गलबार छु रेडियो नेपाल हिन्दा तामाङ साङ्गुरी राङ्द डेनमला ना सूर्य मोक्तान प्रतिनिधि सभालाई तिनी लच्ची साङ्री नोर्बन डाक्टर स्वर्णिम वागले सही नोर सम्बन्धी तिलाई नेपाल टिम्द संशोधन लाबाथेन खारेज लाबा विधेयक 2083 थान्सु बमला ची साङ्री काइब्लन बालेन्द्र शाहला तर्फ ग्याम ठिम न्यायथेन संसदीय मामिला ब्लोन सुविता गौतम सेथान्सुबा नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 ला ठिम्दा देपेन्तेनमा सम्बन्धी विधेयक 2083 राष्ट्रिय सेवा दल 2083 दा सभासे दफबार काठुइला बारी सम्बन्धित समिति रिपोर्ट बमला चुरानोलासी काइब्लन बालेन्द्र शाहला तर्फ ग्याम ठिम ब्लोन सुविता गौतम से ठिम सेङजाङला दिङ युक्ला प्रतिवेदन 2081-82 ठिम सेवा आयोगला दिङ युक्ला प्रतिवेदन 2081-82 थिएन लोक सेवा आयोगला ढुचुई से ढुचा दिङ युक्ला प्रतिवेदन सवारी थान्छु बम्बला चुरानोलासी प्रतिनिधि सभालाई सुङबुन डोल प्रसाद अरियाल से विपद ग्याम ठुङमा घटना से ताबारी खाममा मेलोई थिएन भौतिक क्षति च्याङनाला बारी प्रभावकारी विपदला पूर्व तयारीला बा ठिम सोबारी सरकारलाई ध्यान छेङनाला बम्बला प्रतिनिधि सभालाई तिरी लच्ची साङ्री सांसद गदे से नाम ताई बली छ खाबा भाल ढुई थिएन ब्लुम्बाला घटना गदेले सिटीबा ताम्री ध्यान छेङ्नला बाली छ सुङ्गबन अरियाल से सरकारलाई ध्यान छेङ्नला सुबहिन्ना सुङ्गबन अरियाल से विपदला घटनारी प्रताभका दिँदा राहत भोलाबारी थिएन उद्धार लाबारी खाममा ठिम सुबारी थिएन सजिलो सेन सुरक्षित तसी सवारी छादन सेङमारी खाममा वातावरण सुबारी नन् सरकारलाई ध्यान छेङ्नला बमला चोपी माग छ प्रतिनिधि सभालाई तिनी लसी साङ्री सांसद गदे से राङसे राङदान मेच्युल सिसेपा घटना याम्बुरी ठुङमा लोलोलो समस्या भाल ढुइथेन दुर्घटना रङमा समसामयिक ताम्रे सरकारलाई ध्यान छेङ्नला बमला तिनी लसी साङ्री सांसद गदे से गणेश नेपाली लक्ष्याम्री मेन्दो सोमसे राङसे राङदान मेच्युल सिसेपा ताम्रे सरकारलाई ध्यान छेङ्नला बन हिउल्डी ठुङमा लोलोलो समस्या त छैनला बारी सरकारलाई मागला बमला सांसद गदे से आम सञ्चार माध्यम ग्लेठिम दललाई गोबनला दिम्थेन न्युरोड्री गाडी पेरु लसी थानमा ताम्न छानबिनला भरिन माग्ला बमला चुन लसी सांसद गदेसे हिउल्ला लामन ग्लारी ग्रिङ नाम ताइस्टे बसे भालथेन ढुइला जोखिम मोब ग्लाला हिउलबादा सुरक्षा पिनमारी थेन थेन्दा उद्धार लबरी ङाछन तयार तसिटी बारिन सरकारदा माग्ला बमला दिम्लोन सुधन गुरुङ थिएन मिटर ब्याज पीडित गर्दैछ तिनी 12 निजगढ्री गिक्चरेमला काठुइला बमला सरकारलाई तर्फ ग्याम मिटर ब्याज पीडित गर्दै थिएन काठुइला भरि निजगढ्री दोबा दिम्लोन गुरुङ से पीडित गर्दैछ थानमा गोढु मागला फेरि गिक्चरेमला काठुइला बमला दिम्लोन गुरुङ से पीडित गर्दैलाई ज्ञापन पत्र किन्छुबान पीडित गर्दैलाई माग समस्या थिएन गुनासो छैनला भरि राङ निजगढ्री खाब हिँड्न विषय सुन्छु बमला काठुरी दिम्लोन गुरुङदा मिटर ब्याज पीडित गर्दैछ नाबान खाब समस्या न्याय रिवा थिएन सरकार ग्याम भाइबा ताम गदे थान्से ज्ञापन पत्र दोन्छु बमला मिटर ब्याजलाई विरोध लबान जनकपुर ग्याम भ्रासी याम्बुरी खाबान लबा पीडित गदे रूपताबारी दिम्लोन गुरुङ तिनीश्वरी 12 निजगढी दोबमबा रिमठिम पर्यटन थिएन नागरिक उड्डयन ब्लोन खड्गराज पौडेल से अभौतिक रिमठिम पूर्व सम्पदा सुनला भरि सम्बन्धित हिउलबाला निर्णायक भू थिइन् स्थानीय तहला भूमिका लामन महत्त्वपूर्ण तापमूला विषय संक्षेप बमला प्रतिनिधि सभाला मुकुल बेलबा थिइन् पर्यटन समिति लक्षिणी टिपची साङ्री ब्रोन पौडेल से ग्ला हिउलबा थिइन् रिमठिम अनुसार रिमठिम कादे पोबारे खाम्बासे अभौतिक रिमठिम पूर्व सम्पदालाई अभिलेखीकरण लाबा दुईरी स्थानीय तहरी टिबन खाबा सम्बन्धित हिउलबाला उन्बो धाङबो हेन्सेला ज्ञान सिप थिएन कला ग्रेन आधार सोबारी खामदोल विषय सुङ्छु बहिन्ना ती साङ्री सांसद गदे से राष्ट्रिय स्तरीय आमाइबा थिएन स्थानीय हिउलबासे धान्दिन सोनालासी थानबा जैविक ज्ञान मौलिक मान दिम्रिन मान लाबा ठिम थिएन उन्मोदाङ महेन्सेला सिपराङमा अभौतिक रिमठिम पूर्व सम्पदा सोनाला बारी अध्ययन लाबारी थिएन अनुसन्धान र प्रोत्साहन लाबारी टाङ्गा फेदो बताम्रे सरकारलाई ध्यान छेङ्गला बमला चरणोलासी प्रतिनिधि सभालाई सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युतीय पासपोर्ट छि बताम्रे काठैला बमला समितिलाई टिपची साङ्री रोङसा ब्लोनखाङलाई लोन्छेन अमृत बहादुर राई से तेलमा हेन्से सरकार से विद्युतीय पासपोर्ट सेवा पिनमारी 30 दिन बमला विषय संक्षेप बमला विभाग से 2081 साल डी विद्युतीय पासपोर्ट छिबारी सरकार से ठेक्का रेब मुसाइन 2082 साल डी फ्रेन्च कम्पनी थिएन पासपोर्ट छिबारी सम्झौतालाई बमबा
हिल्चो हो रामचन्द्र पौडेल दा रो हिल्चो हो राम सहाय प्रसाद यादव श्री रूपतासी लिङ्गमला शिव बमला तिनी हिल्चो हो गेदिम शीतल निवास श्री रूपतासी लिङ्गमलामा रो हिल्चो हो यादव से राङ कतार कोरबारी निवन बुबा ताम्ला हिल्चो हो पौडेल दा जानकारी दोन शिवा मुबा विषय हिल्चो हो लोन खाङसे पाङबा हिन्ना रो हिल्चो हो यादव दोल दिनेरी कतारी फ्याङसे जिम बमला रो हिल्चो हो यादव कतार ला गाछा लाग्ले शेख अहमद बिन खलिफा अल थानी डोङमासे नेपाल तर्फ ग्याम दुङ्गाल प्रसालबारी कतार रङ्से रङदन म्युचुअल सिसिबारी माइबा सर्लाही जोङ गो डैता नगरपालिकाला विवेक मण्डल तिनी मानलाबा ताङरी सेबमला निबा सुङ्रे शुक्रबार कुनु सर्लाही रङ्से रङदन म्युचुअल सिसिबारी माइबा मण्डल दा हेलिकप्टर से उद्धारला से याम्बुला कृतिपुरी मुबा वर्ण अस्पतालि मानलाबा ताङरी तिनी स्योरी सिबहिना बिसे जोङ प्रहरी गेदम याम्बुला सुङमुन एसपी पवन कुमार भट्टराई से सुङसिबहिना चुनन गुगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण धरानला सवारी दुर्घटना तमा मेन्दुगी मिसिब मला बिसाम मेन्दुगी घाइते तप मला धरान इटहरी कोशी लोकमार्ग इटहरी उपमहानगरपालिका निचुरी मुबा सेउती चाम्रे तिर्मा मुना स्कर्पियो गाडी दुर्घटना तमा गाडीला ड्राइभर धरान चिसे सोमला बेर्ख राई थिएन नेपाल विद्युत प्राधिकरणला कर्मचारी धरान चिसे ढुला सुमन आचार्य शिवहिना बागमती प्रदेश नाङरी समस्या ताबा लोलोलोलो गोर्ङ्या बचत थिएन छे सहकारी गेन्दुन री टाङ्गा थानमान खापा गादेला सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई गेदिम से तिनी हेन्से टाङ्गा एसिपिन बारी वाङ बमला समस्या ताबा सिभिल बचत दर्शन बचत सुमेरु बचत नेसनल नवबुद्ध बचत थिएन लाली गुराँस बचत थिएन छे सहकारी गेन्दुन री टाङ्गा थानमा गादेला लाख घिक दोना टाङ्गा एसिपिन बारी ती बमला विषय समितिलाई मुल्मी रामेश्वर ढकाल से सुङ्गा हिन्ना बागमती प्रदेशलाई ग्रेन इन्द्र बहादुर बानिया से तिनी ललितपुरलाई जाउला खेली मुबा प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई सभा हल ग्याम टाङ्गा याइसी पिनबारी ती बहिना उसम हुल्ला लामन ग्लारी ग्रेन नामताई बलि सखाफा फाल्थेन डुइसे तिनी दिनी दोनामा गोर्ङी चुइसे गिक सडक ग्याम गर्दै नङ्गाला पमला थेनी गादेरी गोर्सम सडक ग्याम विसाम ठङबारी आखामा ललासी नुङमा मुला विसाम गोर्चुई से भ्रे ग्याम तिलो गिक से चेकेन सेन्सिटिभ मुला विषय सडक विभाग से पाङमा हिन्ना विभागलाई अनुसार ढुइसे कोशी राजमार्ग कान्ति राजपथ मेची राजमार्ग थिएन बुर्तिबाङ ढोरपाटन राजमार्गलाई लामन ग्यामरी ग्याम नङबमला विभागला सूचना अधिकारी सुभाञ्जन दहालसे दुई सय नङनेलाबा सडक ग्याम ठङबारी सम्बन्धित गेदिम सिद्धान्ति गेलाबन मुला विषय सुङबमला जलथेन मौसम विज्ञान विभाग से हिल्ला लामन गारी तान्देनुन क्रिङ्गे नाम ताई सिटी बासे सतर्कता बारी मैजनलाबमला चुनन साङ्गुर गदेला छ्याम्री तिनी द तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञान मल्ला सुगु लसो फ्याफुल्ला

ई रेडियो नेपाल थिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे प्रादेशिक केन्द्रीय समाचार सुनल जाय। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बजेट सम्बन्धी 3 विधेयक प्रमाणीकरण कयलनि अछि। ओ आइ संघीय संसदसँ पारित आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजेटसँ सम्बन्धित 3 विधेयक प्रमाणीकरण कयलनि अछि।

राष्ट्रपति पौडेल नेपालक संविधानक धारा 113 उपधारा 2 अनुसार विनियोजन विधेयक 2083, राष्ट्र ऋण उठेबाक विधेयक 2083 आ आर्थिक विधेयक 2083 प्रमाणीकरण कयल गेल राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा आई जारी विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। विधेयक प्रमाणीकरण भेला पर सरकार के आर्थिक वर्ष 2083-84 के लेल विनियोजित बजट कार्यान्वयन करबाक संवैधानिक तथा कानूनी बाट खुलल अछि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल संग उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव भेंटवार्ता कयलनि अछि। आई राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में भेल भेंट में उपराष्ट्रपति यादव अपन कतार भ्रमण के संबंध में जानकारी कराओल गेल राष्ट्रपति सचिवालय जनौलक अछि। उपराष्ट्रपति यादव आई 3:30 पर कतार प्रस्थान कऽ रहल छथि। ओ कल समाचार प्राप्त भेल ओ कतारक पूर्व अमीर शेख हमीद बिन खलीफा अल थानिक निधन प्रति नेपालक दिस शोक संवेदना व्यक्त करबा दिस ओहि दिन जा लगला। उपराष्ट्रपति यादव कतारक अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के राष्ट्रपति पौड़ेलक दिस शोक संदेश हस्तांतरण करबा कार्यक्रम अछि। प्रतिनिधि सभा विभिन्न दूटा विधेयक दफाभार छलफल के लिए संबंधित समिति में पठेबाक प्रस्ताव स्वीकृत कलक अछि। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक में प्रधानमंत्री बालन शाह के दिशक कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सविता गौतम द्वारा प्रस्तुत कैल ई प्रस्ताव सब बैठक सर्वसम्मति से स्वीकृत कलक अछि। ओ प्रस्तुत कैल नेपाल विशेष सेवा आयन 2042 के साबिकक व्यवस्था जगेबाक संबंधी विधेयक 2083 आ राष्ट्रीय सेवा दल विधेयक 2083 के दफावार छलफल के लेल संबंधित समिति में पठाओल जाके प्रस्ताव स्वीकृत कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने बैठक में मंत्री गौतम प्रधानमंत्री शाहक दिशा आर्थिक वर्ष 2081-82 के न्याय परिषदक वार्षिक प्रतिवेदन, न्याय सेवा आयोगक वार्षिक प्रतिवेदन आ लोक सेवा आयोगक 66 वार्षिक प्रतिवेदन पेश कयने छलथि। एहिना अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले बैठक में अर्थ संबंधी किछु नेपाल कानून के संशोधन आ खारिज करय वाला विधेयक 2083 प्रस्तुत कयने छलथि। प्रतिनिधि सभाक दोसर बैठक 31 गते भिनसर 11 बैसत। प्रधानमंत्री बालन शाहक अध्यक्षता में मंत्रिपरिषदक बैठक शुरू भेल अछि। सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषदक कार्यालय में बैठक बैस रहल अछि। बैठक में देशक समसामयिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक विषयक संग विभिन्न मंत्रालयक दैनिक कार्यसूची ऊपर छलफल भऽ रहल अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खरग राज पौड़ेल अभौतिक सांस्कृतिक संपदाक संरक्षण में संबंधित समुदायक निर्णायक सहभागिता तथा स्थानीय तहक भूमिका महत्वपूर्ण रहबाक बात बतौलनि अछि। सिंह दरबार स्थित प्रतिनिधि सभाक अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ पर्यटन समितिक आई बैसल बैठक में मंत्री पौड़ेल स्थान समुदाय आ परम्परा अनुसार संस्कृति परिवर्तनशील भऽ सकबाक कारणे अभौतिक सांस्कृतिक संपदाक अभिलेखीकरण करैत काल स्थानीय तहक संबंधित समुदायक पौराणिक ज्ञान शिप आ कला आवश्यक आधार होबाक बात बतौलनि। अभौतिक सांस्कृतिक संपदा संरक्षण विधेयक 2081 ऊपर सैद्धांतिक छलफल में मंत्री पौड़ेल ध्वनि दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री तस्वीर तथा डिजिटल प्रविधि सन विभिन्न माध्यम सँ अभौतिक सांस्कृतिक संपदाक विभिन्न विधाक अभिलेखीकरण करब आवश्यक रहल बतौलनि। बैठक में सांसद लोकनि अभौतिक सांस्कृतिक संपदा सभक अवैध चोरी तथा तस्करी नियंत्रणक लेल थप नीतिगत सुधार आवश्यक रहल प्रश्न करैत विदेशी संस्था सँ पैटेंट हेबा सन जोखिम न्यूनीकरण के लेल डिजिटल अभिलेखीकरण के प्राथमिकता देल जेबाक बात पर जोर देलनि। सांसद लोकनि राष्ट्रीय स्तर में ओझल में पड़ल मुदा स्थानीय समुदाय में एखनो प्रचलन में रहल जैविक ज्ञान मौलिक औषधि घरेलू उपचार तथा परंपरागत सीप सन अभौतिक सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण अध्ययन आ अनुसंधान के प्रोत्साहन करबाक लेल आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित कयल जेबाक बात पर सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। बैठक में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालयक सहसचिव सुरेश श्रेष्ठ संबंधित समुदाय सँ लिखित रूप में प्राप्त विवरणक आधार पर पुरखा सँ चलि आयल अभौगति सांस्कृतिक संपदाक अभिलेखीकरण भऽ रहल जानकारी करौलनि। सर्वोच्च अदालत निजी संचार माध्यम सबके सरकारी विज्ञापन नहि देबाक सरकारक परिपत्र खारिज हेबाक ठहर कयलक अछि। सर्वोच्च अदालतक न्यायाधीश सारंगा सुवेदी आ
नृप ध्वज निरौलाक संयुक्त इजलास 2082 साल चैत 18 गते सरकार निजी मीडिया के सरकारी विज्ञापन नहि देबाक निर्णय विरुद्ध पड़ल रीट निवेदन खारिज हेबाक फैसला करैत सरकार द्वारा जारी कयल एहि परिपत्र के खारिज हेबाक ठाढ़ कयलक अछि। सर्वोच्च अदालतक प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाक अनुसार फैसलाक पूर्ण पाठ आ बाकी रहल बतौलनि। मीडिया सोसाइटीक अख्तियार प्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनंत राज लुटेल द्वारा सरकार निजी संचार माध्यम के मात्र सरकारी विज्ञापन देबाक निर्णय गैर कानूनी भेल उल्लेख करैत सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन दायर कयने छलथि। सरकार सरकारी विज्ञापन सब सरकारी संचार माध्यम सब सँ मात्र प्रकाशित एवं प्रसारित करबाक निर्णय कऽ प्रधानमंत्री कार्यालय सँ परिपत्र जारी कयने छल। अदालत ई परिपत्र बदर हेबाक फैसला कयलक अछि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीक सभापति रवि लामिछाने किछु संचार गृहक प्रवेश द्वार में अवरोध करबासन सोम दिन सवारी साधन राखवला कोनो व्यक्ति के कार्रवाई हेबाक बतौलनि अछि। सोम दिन किछु संचार गृह आ नेपाली कांग्रेसक सभापति गगन कुमार थापा घर आगू प्रवेश द्वार के असर परवासन निजी नंबर प्लेटक सवारी साधन पार्किंग कैल भेटल गेल छल। ई सवारी साधन के प्रहरी हटेबाक संगे जरिमाना कऽ छोड़ने छल। आई सिंहदरबार में पत्रकार सब एहि विषय में राखल जिज्ञासा में सभापति लामिछाने सवारी साधन रासपा कार्यकर्ता वा जे केओ राखत ओकरा कार्रवाई हेबाक स्पष्ट कयलनि। सभापति लामिछाने सोम दिनक घटना के संबंध में पार्टी विज्ञप्ति प्रकाशन कऽ रासपा सदैव प्रेस स्वतंत्रताक पक्ष में रहल आ सवारी अवरोध उत्पन्न करय वाला ऊपर कार्रवाई हेबाक जानकारी करा चुकल बतौलनि। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह आ स्वयं बीच हाल भेल भेंटवार्ताक संबंध में राखल गेल एक जिज्ञासा में सभापति लामिछाने एहि भेंट में सुकुम्बासी समस्याक स्थायी आ यथाशीघ्र समाधान, विकसित विविध परिस्थिति, राष्ट्रीय राजनीति आ पार्टीक विविध विषय में बातचीत भेल बतौलनि। गृहमंत्री सुधन गुरुंग आ मीटर ब्याज प्री से बीच बाराक निजगर में आए दिन में भेल पहिल चरणक वार्ता सम्पन्न भेल। मीटर ब्याज विरुद्ध पैदल मार्च करैत जनकपुर से काठमांडू चलनिहार सबके भेटबाक लेल गृहमंत्री स्वयं सुधन गुरुंग आई भिनसर बाराक निजगर पहुँचल छलथि। निजगर स्थित उद्योग वाणी संघक हॉल में गृहमंत्री से स्वयं राखल गेल छह मुद्दाक मांगक संबंध में पहिल चरण के वार्ता सम्पन्न भेल। मीटर ब्याज प्रीत संघर्ष समितिक नेता मनोज पासवान जानकारी देलनि। छलफल के क्रम में गृहमंत्री गुरुंग के मीटर ब्याज प्री सब स्वयं के भोगत आयल समस्या, न्याय के मांग तथा सरकार संग रहल अपेक्षा संबंध में जानकारी करबित ज्ञापन पत्र सेहो बुझौने छल। जनकपुर धाम स्थित ऐतिहासिक विवाह मंडप आ जानकी मंदिर परिसर भीतर रहल जानकी लीला सहितक संग्रहालय आई सँ बंद कयल गेल अछि। मध्य प्रदेशक गृह संचार तथा कानून मंत्री फकीरा महतो विवाह मंडप प्रवेश के निःशुल्क कयल जेबाक कहत टिकट काटे वाला कर्मचारी सँ काल्हि टिकट आ थैली उठा कऽ लऽ गेल कहत जानकी मंदिर के मूल महंतक आदेश पर ई बंद कयल गेल अछि। मंदिर व्यवस्थापन तथा अन्य सरोकार वाला निकाय सँ कोनो परामर्श नहि कऽ दुनू स्थल पर निःशुल्क प्रवेशक व्यवस्था हेबाक कहत टिकट नियंत्रण में लेल गेल। विरोध में राम जानकी विवाह मंडप तथा संग्रहालय बंद कयल जानकी मंदिरक महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव जानकारी देलनि। प्रवेश शुल्क हटेबाक निर्णय एक पक्षीय रूप में कयल गेल आ एहि सँ संस्थाक दैनिक संचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य प्रकारक सुधारक काज सब नहि कयल जा सकबाक कारणे विरोध सहित सेवा बंद कला पर बाहर सँ एनिहार पर्यटक सब मार में पड़ल अछि। विवाह मंडप आ संग्रहालय बंद भेलाक बाद अवलोकन के लेल पहुँचल आंतरिक तथा बाह्य पर्यटक तथा दर्शनार्थी सब प्रभावित बनल अछि। प्रवेश द्वार में ताला लगौलाक बाद ओ सब वापस हेबाक लेल बाध्य भेल जनाओल गेल अछि। एहि बीच मध्य प्रदेशक गृह संचार तथा कानून मंत्री फकीरा महतो विवाह मंडप प्रवेश के निःशुल्क बनाओल जेबाक पक्ष में रहल बतबैत संग्रहालय में किछु शुल्क नहि लेल जा सकबाक ओ बतौलनि। जानकी मंदिर विश्वक हिंदू सभक धरोहर भेला कारणे के सफा सुंदर राखल जेबाक पक्ष में स्वयं भेल बतौलनि। जनकपुर धामक विवाह मंडप आ जानकी मंदिर परिसर में रहल संग्रहालय धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि सँ महत्वपूर्ण पर्यटक संपदा मानल गेल अछि। एहि दैनिक रूप में स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक के उल्लेख्य आवागमन होइत गेल देखल गेल अछि। नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क के 15 ठाम में खसल भूस्खलन सँ यातायात संचालन में आब आयल अछि। सोम दिन सँ शुरू भेल बरसातक कारण साँझ 7 बजे सँ खसल लागल। भूस्खलन सँ भिनसर जारी छल। इस सब स्थान में खसल
भूस्खलन भिनसरे हटौलाक बाद दुनूतर्फी सवारी सञ्चालनमे आयल डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुराक इन्जिनियर अर्जुन घिमरे जानकारी देलनि। रेडियो नेपालसँग सुनै छलौँ मैथिली भाषामा समाचार समाप्त भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रभावी आपदा पूर्व तैयारी की व्यवस्था करने के लिए सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने सरकार का कराया ध्यानाकर्षण। सांसदों ने जोखिम कम करने और जनधन की सुरक्षा पर दिया जोर। मीटर ब्याज पीड़ितों की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व में गठित आयोगों और समितियों की रिपोर्टों को तत्काल लागू करने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। रेड पासपोर्ट के दुरुपयोग के मामले में तत्कालीन संविधान सभा के 3 सदस्य दोषी ठहर और अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के विभिन्न शहरों पर व्यापक हमला। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने मीटर ब्याज पीड़ितों की समस्याओं के समाधान के लिए अतीत में गठित आयोगों और समितियों की रिपोर्टों को तत्काल लागू करने का निर्णय किया है। आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने मीटर ब्याज तथा अनुचित लेन देन से पीड़ित लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित आयोग की रिपोर्टों को तुरंत लागू करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को सौंपने का निर्णय किया। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने दी। स्थित प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई बैठक ने आपदा राहत एवं बचाव कार्य में तैनात सशस्त्र प्रहरी बल के कर्मियों को प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करने का भी निर्णय किया। मंत्री पोखरेल ने बताया कि आपदा के समय नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए खोज एवं बचाव कार्य में जुटने वाले सशस्त्र प्रहरी बल के जवानों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें ये प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नेपाल का प्रतिनिधित्व कर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों प्रशिक्षकों सहायक प्रशिक्षकों फिजियो और प्रबंधकों को नकद पुरस्कार एवं सम्मान पत्र प्रदान करने नेपाल वायु सेवा निगम के निर्देशक मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में महाप्रबंधक की जिम्मेदार भी निभाने हेतु महेश्वर भक्त श्रेष्ठ को नियुक्त करने तथा बीज बीजन प्रथम संशोधन नियमावली 2081 को स्वीकृति देने सहित अन्य निर्णय भी किए। इसकी जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने दी। गृह मंत्री सुधन गुरुंग और मीटर ब्याज पीड़ितों के बीच आज 12 के निजगढ़ में पहले चरण की वार्ता संपन्न हुई। सरकार की ओर से वार्ता के लिए पहुंचे गृह मंत्री गुरुंग ने पीड़ितों द्वारा प्रस्तुत 6 सूत्रीय मांगों पर पहले चरण की बातचीत की। बताया गया है कि दूसरे चरण की वार्ता से पहले सरकार और आंदोलनरत पक्ष दोनों आंतरिक तैयारी में जुट गए हैं। प्रतिनिधि सभा में सांसदों ने सरकार से आपदा जोखिम कम करने, जनधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित जिलों के पीड़ितों को तत्काल राहत और सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण की मांग की। सांसदों ने सरकार से आपदा प्रबंधन की कार्ययोजना सार्वजनिक करने, गणेश नेपाली प्रकरण और उसके बाद राजधानी में

0: हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने तथा मीडिया संस्थानों और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की। उन्होंने कीर्तिपुर होल्डिंग सेंटर में रह रहे विस्थापित सुकुम्बासियों के शीघ्र पुनर्वास, महंगाई, कालाबाजारी और बिचौलिया तंत्र पर नियंत्रण तथा सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया। साथ ही भाद्र 23-24 की घटनाओं पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट साझा करने और प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से संसद में उपस्थित होकर सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देने की मांग भी की। इसके बाद सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने लगातार बारिश, बाढ़, भूस्खलन और डुबान की घटनाओं को देखते हुए प्रभावी आपदा पूर्व तैयारी, राहत बचाव और सुरक्षित यातायात की व्यवस्था करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। इसी बीच प्रतिनिधि सभा में विपक्ष ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के भारत नेपाल सीमा संबंधी बयान को वापस लेकर संसद की कार्यवाही से हटाने की मांग दोहराते हुए अपना विरोध जारी रखा। पाटन उच्च अदालत ने रेड पासपोर्ट के दुरुपयोग और जाली दस्तावेज मामले में तत्कालीन संविधान सभा के 3 सदस्यों को दोषी ठहराने वाले काठमांडू जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। उच्च अदालत ने गायत्री शाह, विश्वनाथ प्रसाद यादव और शिव पूजन राय यादव को सुनाई गई प्रत्येक को 5 महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा को कायम रखा। इन तीनों पर प्रथम संविधान सभा 2008 के सदस्य रहते हुए मिले रेड पासपोर्ट आर्थिक लाभ के लिए बिचौलियों को बेचने का आरोप था। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट से जुड़े 3 विधेयकों को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाने संबंधी विधेयक और आर्थिक विधेयक को संविधान के अनुसार प्रमाणित किया। इन विधेयकों को मंजूर होने के साथ ही सरकार को आर्थिक वर्ष 2083-84 का बजट लागू करने का संवैधानिक और कानूनी अधिकार मिल गया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज कतर रवाना हुए। वो कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर नेपाल सरकार की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। विभिन्न विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त कुलपतियों ने उच्च शिक्षा संस्थानों को दलगत राजनीति से मुक्त बनाकर सुशासन स्थापित करने की साझा प्रतिबद्धता जताई है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की उपस्थिति में सिंह दरबार में आयोजित उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और सुधार पर हुई चर्चा में उन्होंने ये प्रतिबद्धता व्यक्त की। लगातार बारिश और बाढ़ भूस्खलन के कारण देश के 7 प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जबकि हुलाकी राजमार्ग पर यातायात फिर से शुरू हो गया है। नेपाल पुलिस के अनुसार बीपी राजमार्ग, मेची राजमार्ग, कांति लोकपथ, सालझंडी डोरपाटन सड़क, कालीगंडकी कॉरिडोर, मध्य पहाड़ी लोकमार्ग और अर्निक्यू राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन, सड़क धंसने और बाढ़ के कारण बंद है। प्रशासन ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। सर्वोच्च अदालत ने निजी मीडिया को सरकारी विज्ञापन न देने संबंधी सरकार के परिपत्र को रद्द कर दिया है। अदालत ने माना है कि केवल सरकारी मीडिया को विज्ञापन देने का निर्णय कानूनी नहीं था। ये फैसला निजी मीडिया की ओर से दायर याचिका पर सुनाया गया। हालांकि फैसले का विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है। आज देश के 44 जिलों में अचानक बाढ़ का मध्यम से उच्च जोखिम रहने की चेतावनी जारी की गई है। जल एवं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी, मध्य और पश्चिमी नेपाल के कई जिलों की छोटी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, जिससे अचानक बाढ़ की आशंका है। बाढ़ विशेषज्ञ विनोद पराजुली ने बुधवार और गुरुवार को सभी 7 प्रदेशों में सतर्क रहने की अपील की है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी सेना ने आज ईरान के विभिन्न शहरों में नए हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि हमलों के लक्ष्यों और नुकसान का विस्तृत ब्यौरा जारी नहीं किया गया है। इन हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में अमेरिकी हितों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव से मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष की आशंका गहरा गई है और वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी असर पड़ने की चिंता बढ़ी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रभावी आपदा पूर्व तैयारी की व्यवस्था करने के लिए सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने सरकार का कराया ध्यानाकर्षण। सांसदों ने जोखिम कम करने और जनधन की सुरक्षा पर दिया जोर। मीटर ब्याज पीड़ितों की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व में गठित आयोगों और समितियों के रिपोर्ट को तत्काल लागू करने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। रेड पासपोर्ट के दुरुपयोग के मामले में तत्कालीन संविधान सभा के 3 सदस्य दोषी ठहर। और अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के विभिन्न शहरों पर व्यापक हमला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ।
5: ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नुपर्ने होइन र?
6: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही नै मजाले चलाउने
7: *1415# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।